Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीने चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own robot day.
1: What?
2: मरद एक जो अरे कोई देखेगा तो थूकेगा तुम लोगों पर. ऐसा करो ये चूड़ियां पहन लो, मामला लेवल हो जाए.
3: हर इंडियन पिक्चर में ऐसा ही होता है.

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: And what's the time saying? It is 2:51. Good afternoon.
2: जैसे ऊपर से सीधे दिल में आई है आज तो ऊपर वाले पे मानने को जी कर रहा है इकलौती हो तुम ना कोई दूसरी बनाई है

0: Next.
1: खुश नहीं है तू, जिधर बता मैं चल दूं, करिश मगर तू बोल भर, तेरे वश में फंस गई हूँ.
2: Coming up, it is Move Body with Zahra Khan and Scales, along with this one.

0: with Deggy Bannu coming your way. Keep it locked.
1: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मेचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com.
3: BFU Music in association with Eventmaster International and Desi Arts Development Group CIC presents Desi Fest Luton 2026, featuring Roach Killer, Urjan, Kushi Kaur, Summer Blake, Hobajan Talwar, B2 and many more artists, with free entry and free parking Sunday 6 September, Wardown Park, Luton, LU27HW. For more information, visit Desi Fest .co.uk. Radio partner Sunrise Radio, sponsored by Luton Rising, supported by kisspromo.com and Malabar Golden Diamonds.
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Lovely.
7: Feel the fun. PlayOjo.
8: 18 plus, gamble aware.
1: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.

0: मुंडे कुड़िया पंगड़ा पाउंड तैयार हो जाओ।
1: मिसिंग द ओल्ड स्कूल वाइब्स? प्लग इन टू सनराइज रेट्रो, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स, अवेलेबल ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप एंड ऑन sunriseradio.com।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।